0: मोबाइल साउंड सिस्टम सुपथ मूल्य में पाउन का साथ ही सभी प्रकार का टीवी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मरमत कर इसका साथ ही विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बंध र अन्य कार्यक्रम का लागि साउंड सिस्टम भाड़ा में पनि पाइन्छ।
1: टीवी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मरमत करने ट्रेनिंग को पनि सुविधा छ। यसमा विशेष गरी पांच जना को समूह बनाएर आएमा एक जनालाई छूट को पनि व्यवस्था गरिएको छ।
2: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी, चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स, चरीकोट, चरीख्याङ। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 9844491042 र 9844061414।

नया नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज़।

करूंगा, लड़ी तेरी महंगी सब में मैं तो बड़बड़ रहूंगा मेरे शरीर को मेरे शरीर को कुर्सी पे यार चिपका लो कमरेड फैब्रिक से मेरे शरीर को कुर्सी पे यार चिपका लो कमरेड फैब्रिक से रजिना मदीना मैं हूँ तैयार ये रूम को कमरेड रिमोट कंट्रोल से मेरे कुर्सी को शरीर पे यार चिपका लो कमरेड सूट।